0: You can ask.
1: One of your favorite memories.
2: कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी गुजर गई है और उसके बाद जब मैंने बच्चों के साथ चावे नर्सरी में काम करती थी 5 साल मैंने वहाँ काम किया है विच वॉज अ गुड रियली गुड टाइम एंड अब घर में जब अपने बच्चों के साथ होती थी टोटली डिफरेंट लाइफ
3: इट्स वंडरफुल टू हियर अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स एज़ वेल एंड देन यू फील यू आर नॉट इन द सेपरेट बोट यू आर ऑल इन द सेम बोट
4: नहीं जाए मेरा पेट दर्द कर रहा है
0: स्टॉप मेकिंग सच अ फस मुझे जाना है आपको पता है मुझे ट्रेन पकड़नी है जाना तो है फिर भी
5: With our experience, we learned that people learn pick up the things very quickly through role play.
4: नहीं जाए मेरी टमी हर्ट हो रही है
0: अच्छा चले मैं आपको कर लेती हूँ तो मैं जब तक वापस आती हूँ फिर
1: मैं भी आपको मिस करूँगी
5: If I explain briefly about problem solving and how the decision making and negotiating link together and then we can bring the Islamic point of view from it
6: okay Allah Taala farmate hai surah bakra surah al imran mein hai 159 to unko maaf karo dar guzar karo aur unke liye Allah se maafi talab karo aur unse mashwara karo jo tumhare mamlaat hain unke bare mein aur jab tum koi raaye pe कोई जगह पे पहुंच जाओ कोई समझ पे पहुंच जाओ फिर तुम अल्लाह पे अपना यकीन डाल दो और अल्लाह पे तवक्कल करो क्योंकि अल्लाह तवक्कल करने वालों को बहुत पसंद करता है ठीक है
1: मतलब मेनली वही है कि आपने नेगोशिएट करना है और मस्तिहत से काम लेना है
7: To illustrate how to avoid family arguments through negotiation, Arafa uses everyday examples from the women's lives.
5: I mean, all of them are from Pakistan. And I'm from Pakistan, so we know that in negotiating, going to the markets, we have to use this skill all the time. And when we give this example in the group, they quickly understand what the negotiating means. Otherwise, they were struggling to understand how we can do that.
8: It's not like the father; he just gives the orders and that's it. So father has to negotiate with the children, understand their views, compromise. So you have a relationship, you know, love and companionship, affection.
1: अपना पर्स जो आपके राइट हैंड पे है, उसको आप हग करें, ठीक है?
9: Okay. राइट वाला आगे बाहर.
1: Starting from here.
5: It's just more about, you know, love, affection, and coming closer to each other. Through Family Links program, we just tell them that, you know, by understanding feelings of your children, you can develop better relationship, not just with your children, but with the whole family. And there are different strategies to use to make children to understand your point of view instead of just shouting, screaming, and hitting.